या सच किशोर कुमार चाहे कोई मुझे जंगली वी गोना कंटिन्यू नाउ विद अ सॉन्ग फ्रॉम द 1977 मूवी मंजिल द वॉइस ऑफ आशा भोसले एंड द सॉन्ग इज मन मेरा चाहे मेहंदी रचा मन मेरा चाहे मेहंदी रचा लेट्स एंजॉय आशा भोसले